FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 28 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद आप विविध भारती से हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके तुरंत बाद होगा वंदनवार कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे साथ।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने की आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कभी हार नहीं मानते। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज और प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। सुनिए आज का भाग 189 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। सात बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक है मिलिंद सबनीस। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुनिए इसका भाग 28। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर सुने चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में हेलो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 बजे सुनिए पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी है जीवन एक सरल रेखा। लेखिका श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। संपादन सहायक काजल भद्रगे। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। पर सुनिए तराने में पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार। लेखन है वीरेंद्र कश्यप का। निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर। इनकी प्रस्तुति। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए और 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। लेखक एवं स्वर राजुल अशोक का। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे वंदन बार कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए जानिए आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी ही देर बाद सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। सुबह 7:40 पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से सुनिएगा सुप्रभात कार्यक्रम। 8 बजे समाचार प्रभात होगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:15 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे। 8:30 से सुनिएगा विविध भारती के प्रसारण। आज सुबह 10 बजे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से प्रसारित करेंगे नमस्ते हिसार। 11 बजे विविध भारती से रंग तरंग का प्रसारण होगा और 12 बजे आप सुन सकेंगे यादों की महफिल। दोपहर 1:05 पर प्रादेशिक समाचार सुनिएगा। 1:10 पर समय रहेगा विविध भारती की गीतमाला का।

दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार होंगे, 2:15 पर हिंदी समाचार आप सुनेंगे। दोपहर 3 बजे विविध भारती से सुनिएगा सखी सहेली और 4 बजे गीतों भरी कहानी। आकाशवाणी के हिसार केंद्र से आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे आपका मनपसंद फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम हेलो हिसार। 6 बजे हिंदी समाचार का वक्त होगा, 6:10 पर प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। 6:20 पर सुनेगा भक्ति संगीत। 6:30 का कार्यक्रम प्रसारित होगा, प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग। 7 बजे खेती किसाना सित्ती कार्यक्रम होगा। 7:30 बजे म्हारे गांव कार्यक्रम आप सुन सकेंगे।

आज रात 8 बजे सुनेगा पंजाबी लोकगीतों का कार्यक्रम। 8:30 बजे खुला आकाश के अंतर्गत आप सुनेंगे एक फिल्म से। 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे। 9 बजे अंग्रेजी समाचार। 10 बजे तक आप सुन सकेंगे विविध भारती के प्रसारण। 10 बजे सुनिएगा संदेश आपके गीत, हमारे व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम। और सभा के अंत में यानी रात 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे।

कल सुबह की सभा आरंभ होगी 5:55 पर। 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार। विविध भारती से 6:05 पर वंदन वार कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम रूपरेखा 6:45 पर आप सुनेंगे। संस्कृत समाचार 6:55 पर, हिंदी समाचार 7 बजे और अंग्रेजी समाचार 7:05 पर प्रसारित होंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे हरियाणवी गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। सुप्रभात, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 7:40 पर। समाचार प्रभात 8 बजे, अंग्रेजी समाचार 8:15 पर और विविध भारती के प्रसारण आप सुनेंगे 8:30 से लेकर 10 बजे तक।

कल सुबह 10 बजे सुनिएगा आकाशवाणी के हिसार केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम नमस्ते हिसार। 11 बजे विविध भारती से रंग तरंग, 12 बजे यादों की महफिल होगा, 1:05 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, 1:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला, 2 बजे अंग्रेजी समाचार, 2:15 पर हिंदी समाचार होंगे, दोपहर 3 बजे आप विविध भारती से सुन सकेंगे सखी सहेली कार्यक्रम और 4 बजे गीतों भरी कहानी। कल शाम 5 बजे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेश आपके गीत हमारे, 6 बजे हिंदी समाचार, प्रादेशिक समाचार 6:10 पर होंगे, भक्ति संगीत आप सुनेंगे 6:20 पर, 6:30 बजे युवा उमंग कार्यक्रम का प्रसारण होगा, 7 बजे किसानवाणी कार्यक्रम सुनिएगा, 7:30 बजे महारे गांव

कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात्रि 8 बजे शहर की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा सुनिएगा। 8:30 बजे खुला आकाश कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे एक फिल्म से। 8:45 का समय रहेगा हिंदी समाचारों का। 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे। 10 बजे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से आप सुनेंगे आपका मनपसंद फोन इन प्रोग्राम हेलो हिसार, जिसका पुनर्प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: अभी आप कार्यक्रम रूपरेखा सुन रहे थे। FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।
1: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है, चकरक चीचा चो चकलो रंगंडो वंडो लकरकटम। और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री, तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
0: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
1: हर रविवार सुबह 10:30 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: अर्ज किया है, राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
0: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
1: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
0: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
1: हर मंगलवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
3: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
1: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
4: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
1: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है,
5: विली बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड ला थॉमस अल्वा एडिसन,
0: कोई कला में उत्कृष्ट है,
1: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
1: कार्यक्रम एक शख्सियत
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 MHz पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार और उसके तुरंत बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे साथ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटलीति देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृत तैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिल ईंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीन सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य आंध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मंडलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामंत्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं गृहीष्यति। उत्तर प्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 111 जनाः मृताः, 200 जनाः व्रणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मंडलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मंडल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है।

पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नई सुबह नई सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी असार कार्यक्रम लोकरंग के साथ। आज के लोकरंग कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणवी गीत संगीत के साथ।
1: बात उस टाइम की, भगत सिंह के मन में भारत को आजाद कराने का जुनून सर पे सवार था। भगत सिंह के आजादी के जज्बे को देख के भगत सिंह की मां ने संदेश भेजा कि मेरे बेटे कदे भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना, अपनी आत्मा को धोखा नहीं देना, तुम्हारे बलिदान को सदा भारत माता याद रखेगी। किसी भी मां ने आपते अच्छा बेटा नहीं मिल सकता, कोई भी मां मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हो सकती। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को पूरे देश में गुंजा दो। मां की चिट्ठी पढ़ के भगत सिंह का जोश दुगुना बढ़ गया। भगत सिंह ने मां को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में के लिखा उस मौके की बात रणबीर बड़वासनी और साथियों की आवाज में।

सवरके गोणे गा माता चरी कूकतई सी सनता न होई कह करेंगे तू सोने करिए।

0: हरियाणवी लोकगीतों का देहाती कार्यक्रम लोक रंग आप सुन सके हैं। खेती बागवानी किसानी और पशुधन का कार्यक्रम किसान वाणी और खेती किसाना सेती हर रोज शाम को 7 बजे। गांव की बात आपके साथ कार्यक्रम मारे गांव हर रोज शाम 7:30 बजे। हरियाणवी कला संस्कृति संस्कार और स्वास्थ्य का कार्यक्रम हरियाणवी लोक मंच हर मंगलवार को रात 8 बजे आप सुन सके हैं। किस्से की बात हर रागनी के साथ कार्यक्रम थारी मारी पसंद हर वीरवार को शाम 5 बजे। रागनी एक किस्से की हर एतवार को शाम 7 बजे कार्यक्रम मारी पसंद। बात उस टेम की राजा भोज की बड़ी रानी रात को ठाकुर द्वारे में जाया करती, लेकिन छोटी रानी ने यह बात नून मिर्च लाके राजा भोज को बता दी। अर्न्यू बोली, आपकी बड़ी रानी का न्यू निबेरा वासा रात कड़े रहे। एक दिन राजा भोज तड़के तड़क फाटक के पैरे पे खड़ा हो गया। बड़ी रानी बानमती पैर के तड़के ठाकुर द्वारे में जब उल्टी आई और फाटक खोलने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन फाटक पे राजा भोज पैरे पे खड़ी थी। उस मौके पे राजा भोज और रानी बानमती के बीच क्या सवाल जवाब होते हैं, उस मौके की बात पाले राम दैया और साथियों की आवाज में।
1: ओ

बात उस टाइम की जब वो चंद्रहास दाए के पास अपना गुजारा करने लग गया, लेकिन वो याना बालक माँ बाप को याद करके रोन लाग जाए। वो दाए समझाने लगी, भाई रोन का कोई फायदा को ना। दाए कहने लगी, 5 साल की उम्र में भी आप बहुत कुछ कर सको हो। दाए 5 साल के याने बालक चंद्रहास को क्या समझाती है, उस मौके की वानगी वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और साथियों की आवाज में।

0: ये था आज का हरियाणवी गीत संगीत कार्यक्रम लोक रंग। इसी के साथ थे आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बन भैया ने राम राम।
1: नया बेहतर है
2: क्योंकि तुम ही हो,
3: किंतु पुराना बेहतरीन।
4: दिल चीज क्या है?
1: नया श्रेष्ठ है
2: केसरिया तेरा,
3: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
1: नया उत्कृष्ट है
2: तेरी गलिया,
3: किंतु पुराना अनमोल।
4: चुरा लिया है तुमने जो दिल था।
1: नया अनूठा है
3: किंतु पुराना अनुपम।

0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
1: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। क्या आप परेशान हैं?
2: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
0: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
1: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
0: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
4: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
1: या आप प्यार में हैं?
5: पहला पहला प्यार है।
0: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
6: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
0: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
1: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग FM एंड 102.3 MHz पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं सुप्रभात, कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है। नए सवेरे की पहली सांस के साथ, नई रोशनी की पहली किरण लेकर हम हाजिर हैं आपके अपने रेडियो के साथ। दोस्तों, जब रात की चुप्पी टूटती है और खिड़की से आती हवा हमसे कहती है उठो, जिंदगी फिर से एक मौका दे रही है, तो हमारी सुबह खिल उठती है। आज की यह सुबह बीते कल की थकान धोने आई है, उम्मीदों की चादर उड़ाकर मन में फिर से विश्वास जगाने आई है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आप सुन रहे हैं सुप्रभात, जहां हर शब्द मुस्कान बनकर आपके दिन की शुरुआत करेगा। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक। श्रोताओं, मौसम की बात करें तो आज आसमान साफ रहने की संभावना है। हालांकि कल रात बारिश हुई थी, सुबह की हल्की ठंडक दिन चढ़ने के साथ सुकून भरी गर्माहट में बदल जाएगी। और अब आज का सुविचार, जो बीत गया उसे सीख लो और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि हर सुबह हमें बेहतर बनने का एक नया अवसर देती है और हमें उस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। सुबह के इस पावन बेला में अब समय है गीता के अमृत वचनों का। कहा गया है गीता केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला दीपक है। इसके श्लोक हमें कर्म, धैर्य और संतुलन का मार्ग सिखाते हैं। तो आइए इन्हीं विचारों के साथ करते हैं गीता के श्लोक का पाठ। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुख

संबंधात प्रमुच्यते, अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।

0: शर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें।
1: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
3: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
4: अभी न जाओ छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
2: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। हमारी भाषा की खूबसूरती उसकी कहावतों में बसती है। ये कहावतें अनुभव की छोटी छोटी किताबें होती हैं, है ना, जो बिना लंबा उपदेश दिए जिंदगी का बड़ा सच कह जाती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही प्रसिद्ध हिंदी कहावतों के बारे में। कागजी घोड़े दौड़ाना, यह है पहली कहावत जिसका अर्थ है केवल बातें करना काम न करना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस कहावत का अर्थ है गलतियां करने के बाद दिखावटी धर्म परायणता। अगली कहावत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब हार या अपमान पर बेवजह गुस्सा निकालना। खाने के दांत और दिखाने के और, यानी मन में कुछ और कहने के लिए कुछ और। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब हर तरह से फायदा होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ताकतवर की हर कहीं चलती है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका अर्थ है बिना नुकसान के समस्या हल करना।

और अब आपके लिए एक प्रेरक प्रसंग। एक बार एक संत नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और बोला, महात्मा जी, मुझे शांति नहीं मिलती। संत ने उसे पास बुलाया और नदी की ओर इशारा करके कहा, इस नदी को देखो, ये बिना रुके बहती रहती है, कभी शिकायत नहीं करती। व्यक्ति बोला, लेकिन मेरी परेशानियां। संत मुस्कुराए, परेशानियां नदी के पत्थरों जैसी हैं, अगर रुकोगे तो चोट लगेगी, अगर बहते रहोगे तो रास्ता बन जाएगा। उस दिन उस व्यक्ति को समझ आया कि जीवन में शांति परिस्थितियां बदलने से नहीं, बल्कि दृष्टि बदलने से आती है।

श्रोताओं, याद रखिए, हर दिन एक खाली पन्ना है और आपकी सोच उसकी सबसे खूबसूरत लिखावट। इसी विश्वास के साथ इस सवेरे को मुस्कान दीजिए, अपने काम को ईमानदारी दीजिए और जीवन को धन्यवाद कहना मत भूलिए। अनुमति दीजिए, कल फिर एक नई सुबह, नई बातों और नए एहसासों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत

0: चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली

0: लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र की सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेर सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाऊ में सैंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है।

आर इम्पॉसिबल फिल्म से अनुष्का मनचंदा, नरेश कामत की आवाज, अन्विता दत्त की बोल और सलीम सुलेमान का संगीत।

सही तो कह रहे हैं, खुद के जैसा कोई दूसरा ढूंढना आसान है क्या? खुद की नजरों में तो हम सभी हैं 10 on 10, लेकिन आखिर है क्या हमारे इस कॉन्फिडेंस की वजह, हमारे सफलताओं की नींव और असफलताओं में बढ़ते वो हाथ जो रहते हैं हमें पकड़ने के लिए तैयार? हमारा परिवार, हमारी फैमिली और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फैमिली डे पे। तो आइए कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, खुशी हो या गम, साथ रहे हर पल, तारारंपम। इस फिल्म से शान महालक्ष्मी अय्यर, स्नेहा सुरेश रवन की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल और इस गाने की का म्यूजिक बनाया है विशाल शेखर ने।

0: जल्दी सुनवाएंगे आपको आजा नचले फिल्म से ये गाना, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

अगला गाना, अगले गाने का इंतजार हुआ अब कम। आइए सुनते हैं आजा नचले फिल्म से ये गाना, चित्रलोक कार्यक्रम में सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। पीयूष मिश्रा के बोल और संगीत है, सलीम सुलेमान का।

राजा नचले फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। वैसे इस फिल्म की एक बहुत ही खास बात है, इस फिल्म से कमबैक हुआ था वेरी ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल मूवी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, विविध भारती की तरफ से विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

सुनिए निकी फिल्म डेढ़ इश्किया से ये गाना, रेखा भारद्वाज के बोल, और माफ कीजिएगा, रेखा भारद्वाज की आवाज में बोल है गुलजार के और विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: बारे में आप और जान सकते हैं आज के फनकार कार्यक्रम में, जो कि पेश होगा आपके लिए 9:30 पर, और इसका पुनः प्रसारण होगा आज रात 9:30 पर। कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं, पर सबसे पहले ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना भूल भुलैया 3 फिल्म से। आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में आदित्य रिखारी के बोल, संगीत है लियो जॉर्ज का, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी का।

और जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आज के बाद के वादों को भी संभाल के रखे, तो आपका दिल तो भर ही जाएगा बहारा से। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से सुनिए श्रेया घोषाल, सोना मोहापात्रा की आवाजों में ये गाना, कुमार के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि इनको प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।
1: इश्क की धुन

अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए 30 मार्क हां फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने। अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर, तो सुनना ना भूलिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललिता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो जरा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग जीवा माधुरी दीक्षित से।

की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था, जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का

मन बना लिया। वो साल था 1984 जब रांची प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

सुनीता नवासी ने कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गई। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नच ले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इस साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जों चकमक में आग, तेरा साइन तुझ में है, तो जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे तो ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है तो सिर्फ उजाला नहीं लाती, वो उम्मीद भी लाती है, वो भरोसा भी लाती है और वो एहसास भी कि हर सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर चलिए। ये हवा जो आपके आंगन से होकर गुजर रही है, ये सड़कों पर चलती हलचल, चाय की प्याले से उठती भाप और दिल में पलती छोटी छोटी उम्मीदें सब मिलकर कह रही हैं नमस्ते हिसार। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये संस्कारों की मिट्टी है, ये मेहनत की खुशबू है, ये रिश्तों की गर्माहट है। इसी अपनेपन के साथ, इसी सुकून के साथ हम हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते हिसार में, जहां हर शब्द आपका है, हर आवाज आपकी है और हर सुबह आपकी मुस्कान से पूरी होती है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक। श्रोताओं, हर सुबह अपने साथ सिर्फ एक नई रोशनी नहीं लाती, वो अपने साथ लाती है आपके शहर की धड़कन, आसपास की हलचल और उन खबरों की सच्चाई जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं। तो अब वक्त है जानने का हिसार और आसपास के इलाकों की भरोसेमंद खबरें। ये पहली खबर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं के नतीजों की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार जिले में 21,297 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 19,387 विद्यार्थी पास हुए। परिणाम के आधार पर हिसार ने प्रदेश में 14वां स्थान हासिल किया। जिले का पास प्रतिशत इस बार 91.03% रहा है। जिले के रिजल्ट में इस बार भी गिरावट आई है। पिछले साल हिसार का प्रदेश में 9वां स्थान था, इस साल जिला टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। 2025 में हिसार का परिणाम 93.96% था, जो इस बार घटकर 91.03% रह गया, यानी पिछले साल के मुकाबले 2.93% कम है। और ये अगली खबर खेल जगत से। आर्यनगर के बॉक्सर सोनिया ने पहली बार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में 1 मई से 15 मई तक आयोजित हो रही है। इसमें सोनिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें सोनिया ने कजाकिस्तान के बॉक्सर को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल मुकाबला उज्बेकिस्तान के साथ हुआ, उसमें उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है सोनिया ने। सोनिया 15 दिन पुणे में प्रशिक्षण कैंप में ट्रेनिंग लेकर उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हुई थी। सोनिया ने अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 40 किलो भार वर्ग में भाग लिया। कोच ने बताया कि सोनिया 16 मई को हिसार पहुंचेंगे। यहां आने के बाद मलिकपुर चौक से आर्यनगर तक शोभा यात्रा और सम्मान यात्रा निकाली जाएगी।

0: संसार की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे, RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है, और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
4: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
5: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा,
3: हर रविवार सुबह 10:30 पर,
5: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
6: नमस्ते हिसार कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी हम रेडियो पर प्रोग्राम देते हैं तो प्रोग्राम का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा होता है? सबसे अच्छा हिस्सा तब आता है जब आप हमसे जुड़ते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए। जब भी आप हमसे जुड़ते हैं तो वो हमारा सबसे खुशी का पल होता है, जब हम दिल से जुड़ाव महसूस करते हैं। और वो वक्त अब आ गया है क्योंकि हम आपसे पूछने वाले हैं दो सवाल, जिनके जवाब आप देने वाले हैं व्हाट्सएप पर। और हम पूछ रहे हैं आपसे दो सवाल। पहला सवाल है, संगीत निर्देशक RD बर्मन, जो कि बहुत मशहूर संगीत निर्देशक हैं, उनके पिता भी एक बहुत मशहूर संगीतकार थे, उनका नाम क्या था? मशहूर संगीतकार RD बर्मन के पिता, जो कि मशहूर संगीतकार थे, उनका क्या नाम था? और दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों के सवालों के जो जवाब हैं वो फटाफट आप व्हाट्सएप नंबर पर जितनी जल्दी हो हमें लिख भेजिए। और अपना पसंद का जो गीत है वो जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं हम हमेशा आपको बताते हैं कि जो श्रोता हमें सबसे पहले जवाब भेजेंगे उनकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। तो आपने सही जवाब भेज दिया, और अगर आप पसंद का गीत लिखना भूल गए तो फिर हम आपकी पसंद का गीत कैसे सुनवाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सही जवाबों के साथ आप अपनी पसंद का गीत लिखना ना भूलें। हम इंतजार कर रहे हैं आपके सही जवाबों का।

0: क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
0: क्या आप डांस करना चाहते हैं?

0: या आप प्यार में हैं?
1: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
3: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
0: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: अर्ज किया है राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
0: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
0: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।
5: राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
2: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 MHz पर।
0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका नमस्ते हिसार में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक। दोस्तों हम सब अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में भागते रहते हैं और सफलता के लिए प्रेरणा ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोगों की जो हमें प्रभावित करते हैं खोज जारी रखते हैं हम, और जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अलग किया है कुछ बड़ा किया है ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हम सफलता की जो मार्ग है सफलता का जो रास्ता है उस पर आगे बढ़ते हैं। हमारे हिसार की मिट्टी ने भी ऐसे बहुत सारे लोग दिए हैं जिन्होंने खामोशी से मिसालें कायम की हैं। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिसार की उसी प्रेरणा से जिसकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों हौसला कभी छोटा नहीं होना चाहिए। हिसार के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं चौधरी देवी चंद भ्याण। उनके पिता चौधरी मातुराम गांव के एक छोटे किसान थे। उनका जन्म 18 नवंबर 1925 को हिसार के पास जेवरा गांव में हुआ था। उन्होंने कई वर्षों तक सेवा की और 1985 में राजस्व अधिकारी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके कुछ कार्यों का उल्लेख करना उचित होगा इसलिए हम आगे उन पर चर्चा करेंगे। अपनी सेवा अवधि के दौरान चौधरी भयान पटवारी कामिंगो यूनियन के नेता और तहसीलदार और नायब तहसीलदार एसोसिएशन के महासचिव थे। वो हिसार के उन चुनिंदा निवासियों में से एक थे जो देश के विभिन्न जाट संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे, जिनमें जाट धर्मशाला, हरियाणा जाट सभा, अखिल भारतीय जाट महासभा, जाट समाज कल्याण परिषद और विश्व जाट आर्यन फाउंडेशन शामिल हैं। अपने समुदाय के साथियों की मदद से चौधरी भ्याण ने हिसार के स्थानीय अधिकारियों से शहर के मुख्य चौक पर चौधरी छाजूराम की प्रतिमा स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने शहर के छाजूराम पार्क का जीर्णोद्धार भी करवाया। कई वर्षों तक ये जाट सभा समाचार और जाट दर्शन के मानद संपादक रहे, बंधु पत्र के संरक्षक भी रहे। फिर भी चौधरी भ्याण की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि 25 अगस्त 1986 को हिसार में स्थापित समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को बढ़ावा देना था, जिसके तहत हिसार में योग का प्रचार प्रसार किया जाता है। उन्होंने हिसार के विभिन्न स्थानों पर 5 योग साधना केंद्र खुलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका

मिकानी भाई। हालांकि इसका मुख्य केंद्र महावीर स्टेडियम में स्थित है, इन पांचों योग साधना केंद्रों में 21 प्रशिक्षित योग शिक्षक निशुल्क योग सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों पुरुष और महिलाएं इन योग साधना केंद्रों से लाभान्वित हो चुके हैं। समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट हिसार के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक धर्मार्थ औषधि गृह भी चलता है। ये सच है कि चौधरी देवी चंद भ्याण कुछ जाट संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे जातिवादी थे। वे हिसार के उन सार्वजनिक व्यक्तियों में से एक थे जिनके हमारे क्षेत्र के लगभग सभी वर्गों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार और आप सबके जवाब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमने दो सवाल पूछे थे आपसे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, मशहूर संगीत निर्देशक आरडी बर्मन के पिता भी एक मशहूर संगीतकार थे, उनका क्या नाम था। इसका सही जवाब है एसडी

परमन। दूसरा सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है, यानी कि आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो अब हम शुरू करते हैं जवाबों का सिलसिला। तो सबसे पहला जो जवाब हमारे पास आया है वो है गांव जेवरा हिसार से, भेजने वाले हैं वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण, और इन्होंने दोनों जवाब बिल्कुल सही भेजे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अगला जो जवाब भेजा है वो गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना का है, और इन्होंने भी दोनों जवाब बिल्कुल सही भेजे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अगला सही जवाब है तस्वीर सिंह शोरान का, जो उन्होंने भेजा है ग्लोबल स्पेसेस हिसार से, आपके भी दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये जो अगला जवाब हमारे पास आया है, जो सबसे पहले आया है हमारे पास, वो भेजा है गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से, भेजने वाले हैं सज्जन जांगड़ा, राजपाला, नवीन, मनदीप, प्रियंका, सपना, नीतू और वेदांश जांगड़ा, और इन्होंने दोनों जवाब सही भेजे हैं, बहुत बहुत बधाई सज्जन जी आपको। और साथ ही इन्होंने हमराज फिल्म का गीत सुनना चाहा है, तो लीजिए आपकी फरमाइश पर हाजिर है ये गीत।

दोस्तों, जैसा कि हमने सवाल में भी पूछा था, आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। परिवार दुनिया की सबसे पहली पाठशाला, जहां बिना बोले समझ लिया जाता है, जहां डांट में भी प्यार छुपा होता है और जहां हर गिरावट के बाद कोई ना कोई हाथ थामने को तैयार होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आइए कुछ पल उन रिश्तों के नाम करें जो हमें हम बनाते हैं।

दोस्तों, हर वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिवारों के महत्व और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक योगदान को सम्मानित करने के लिए घोषित किया गया है। अगर उद्देश्य की बात करें तो परिवारों की सामाजिक संरचना और मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। परिवारों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर विमर्श को प्रोत्साहित करना इस दिवस का उद्देश्य है। नीति निर्माताओं को परिवार समर्थक नीतियां बनाने हेतु प्रेरित करना भी इस दिवस का महत्व है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रस्ताव पारित कर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था। पहली बार ये दिन 1994 में मनाया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष भी था। परिवार समाज की मूल इकाई है और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मूल्य, परंपराएं, संस्कार, सामाजिक व्यवहार की नींव रखता है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और भावनात्मक विकास परिवार में ही होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो आपसी सहयोग और समन्वय से क्रियान्वित होती है और जिसके समस्त सदस्य आपस में मिलकर अपना जीवन प्रेम, स्नेह और भाईचारा पूर्वक निर्वाह करते हैं। संस्कार, मर्यादा, सम्मान, समर्पण, आदर, अनुशासन किसी भी सुखी, संपन्न और खुशहाल परिवार के गुण होते हैं। कोई भी व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, उसी से उसकी पहचान होती है और परिवार से ही अच्छे बुरे लक्षण सीखता है। परिवार सभी लोगों को जोड़े रखता है और दुख सुख में सभी एक दूसरे का साथ भी देते हैं। कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ के आंचल

चल से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। एक अच्छा परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति निर्माण तक भूमिका निभाता है। इसलिए कहा भी जाता है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। ऐसी भावना के पीछे कटुता, शत्रुता, घृणा, इन सब को कम करना है। परिवार के महत्व और उसकी उपयोगिता को प्रकट करने के उद्देश्य से हर साल 15 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिवार दो तरह के होते हैं, एक एकाकी परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। भारत में प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार की धारणा रही है। संयुक्त परिवार में वृद्धों को संबल प्रदान होता रहा है और उनके अनुभव और ज्ञान से युवा और बालक पीढ़ी लाभान्वित होती रही है। संयुक्त पूंजी, संयुक्त निवास, संयुक्त उत्तरदायित्व के कारण, वृद्धों का प्रभुत्व रहने के कारण परिवार में अनुशासन और आदर का माहौल हमेशा बना रहता है। लेकिन बदलते समय में ये सब कुछ अलग तरह से होता जा रहा है। किसी भी सशक्त देश के निर्माण में परिवार एक आधारभूत संस्था की तरह होता है, जो अपने विकास कार्यक्रमों से दिनों दिन प्रगति के नए सोपान तय करता है। परिवार से इतर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, इसलिए परिवार के बिना अस्तित्व के कभी सोचा नहीं जा सकता। बदलते समय में तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, उदारीकरण के कारण संयुक्त परिवार की परंपराएं चरमराने लग गई हैं। एकाकी परिवारों की जीवन शैली ने दादा दादी, नाना नानी की गोद में खेलने और लोरी सुनने वाले बच्चों का बचपन छीन कर उन्हें मोबाइल का आदि बना दिया है। उपभोक्तावादी संस्कृति, अपरिपक्वता, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, स्वकेंद्रित कमाने वाले सदस्य की पत्नी की व्यक्तिगत इच्छाएं, ये सब, इन सब ने मिलकर माहौल को बहुत बदल दिया है। इसके अलावा बुजुर्ग वर्ग और आधुनिक पीढ़ी के विचार मेल नहीं खा पाते। बुजुर्ग पुराने जमाने के अनुसार जीना पसंद करते हैं तो युवा वर्ग आज के स्टाइलिश लाइफ जीना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच संतुलन की कमी दिखती है, जो परिवार के टूटने का कारण बनती है। अगर संयुक्त परिवारों को समय रहते नहीं बचाया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी ज्ञान संपन्न होने के बाद भी दिशाहीन होकर विकृतियों में फंस कर अपना जीवन बर्बाद कर देगी। अनुभव का खजाना कहे जाने वाले बुजुर्गों की असली जगह वृद्धाश्रम नहीं बल्कि घर है। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दरो दीवार नहीं रहते। वो घर घर नहीं होता जिसमें कोई बुजुर्ग नहीं होता। ऐसा कौन सा घर परिवार है जिसमें झगड़े नहीं होते? लेकिन ये मनमुटाव तक सीमित रहे तो बेहतर है। मनभेद कभी नहीं बनने दिए जाए। बुजुर्ग वर्ग को भी चाहिए कि वो नए जमाने के साथ अपनी पुरानी धारणाओं को परिवर्तित करे। देश में ओल्ड एज होम की बढ़ती संख्या इशारा कर रही है दोस्तों कि भारत में संयुक्त परिवारों को बचाने के लिए एक स्वस्थ सामाजिक परिप्रेक्ष्य की नितांत आवश्यकता है। वही महंगाई बढ़ने के कारण परिवार के एक दो सदस्यों पर पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी आने के कारण आपस में हीन भावना पनपने लगी है। गांव में रोजगार का अभाव होने के कारण अक्सर एक बड़ी आबादी का विस्थापन शहरों की ओर गमन करता है। शहरों में भीड़ भाव रहने के कारण बच्चे अपने माता पिता को चाहकर भी पास नहीं रख पाते, और अगर रख भी लें तो वो शहरी जीवन के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते। गांव की खुली हवा में सांस लेने वाले लोगों का शहर की सकरी गलियों में दम घुटने लगता है। इसके अलावा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने के कारण आधुनिक पीढ़ी का अपने बुजुर्गों और अभिभावकों के प्रति आदर कम होने लगा है। वृद्धावस्था में अधिक बीमार रहने वाले माता पिता अब उन्हें बोझ लगने लगे हैं। वो अपने संस्कारों और मूल्यों से कटकर एकाकी जीवन को ही अपनी असली खुशी और आदर्श मान बैठे हैं। इन सब पर काम करना होगा। ये मानते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, पुराने मूल्य थे, उन सबको वापस लाना होगा। हमें अपने परिवार के महत्व को समझना होगा, अपनी आकांक्षाओं को सीमित करना होगा। जो जीवन की भागदौड़ है, आपाधापी है, उस पे थोड़ा सा नियंत्रण लगाना होगा। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करें, सब अपने अपने परिवार को बचाने और बनाने की कोशिश करें और अपना पूरा योगदान दें, पूरी कोशिश डालें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो पुराने हमारे मूल्य थे, जो संस्कार थे, जो परंपराएं थीं, वो लौट कर आ जाएं। आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य से ये सब संभव हो सकता है और
जो आज का अंतर

0: राष्ट्रीय परिवार दिवस है, जिसका उद्देश्य है परिवारों में तालमेल बनाए रखना और परिवारों को जोड़ कर रखने की परंपरा को निभाना। ये हम सब कायम कर सकते हैं।
1: चिक बम बम बम चिक चिक बम।

दोस्तों आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार। नमस्ते हिसार में और सब बातें हों और स्वास्थ्य की चर्चा ना हो तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि अक्सर हम स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, स्वस्थ जीवन सूत्र बताते हैं आपको। स्वस्थ जीवन को

जटिल लक्ष्य नहीं है बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। सही खान पान, पर्याप्त पानी और संतुलित दिनचर्या अपनाकर हम न केवल बीमारियों से दूर रहते हैं बल्कि मन और शरीर दोनों को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि संतुलित आहार कैसा हो। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो। रोज के भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, दूध दही और सीमित मात्रा में स्वस्थ वसा शामिल करने चाहिए। तले भुने और बहुत ज्यादा मीठे खाद्य पदार्थ कम लें। समय पर और जरूरत के अनुसार भोजन करना पाचन को बेहतर करता है और शरीर को निरंतर ऊर्जा देता है। इसके अलावा अगर आपके कोई शिकायत हो, जैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है या शुगर की बीमारी है, तो उस हिसाब से आप अपनी जो डाइट चार्ट है वो डॉक्टर से बनवा सकते हैं और उसमें मीठा बिल्कुल ना खाएं और जो तेल और ऑयली चीजें होती हैं वो बिल्कुल बंद कर दें, नमक कम ले सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज होती है, जो अक्सर डॉक्टर्स भी कहते हैं हमें, पर्याप्त पानी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और खासकर गर्मियों में जब शरीर डिहाइड्रेटेड होने का खतरा होता है। हम अक्सर बाहर निकलते हैं तो पानी की बोतल साथ लेकर निकलें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हर जगह पानी उपलब्ध नहीं होता और आजकल जो गर्मियां चल रही हैं, धूप और चिलचिलाने वाली गर्मी है बिल्कुल और लू चलेगी आगे, तो ऐसे में अगर आपके पास पानी नहीं होगा और आप 3-4 घंटे बाहर रहेंगे तो वो मुश्किल हो सकती है। तो अपना पानी साथ में रखें जरूर, कहीं पर भी जाएं, और 7-8 ग्लास पानी हमें लगता है कि एक आदमी के लिए दिन भर में बहुत जरूरी होता है। पानी शरीर का मूल आधार होता है। ये पाचन, रक्त संचार, विषैले तत्वों को बाहर निकालने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके 2-3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए और सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना अच्छी आदत है। ये जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें कि सुबह उठते ही 1 गिलास पानी जरूर पिएं। और इसके अलावा तो आप सभी जानते ही हैं, नियमित शारीरिक गतिविधि, जो रोज कम से कम 30 मिनट चलना, योग या फिर कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। नींद पर्याप्त बहुत जरूरी है हमारी स्वस्थ दिनचर्या के लिए। 7-8 घंटे की गहरी नींद शरीर की मरम्मत करती है। और इसके अलावा मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसका ध्यान भी रखना जरूरी है, जो ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से होता है। नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ना आने दें। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, गीता के इस सार को अपनाएं। और जब आप मन में पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो यकीनन आपके साथ अच्छा होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्वस्थ दिनचर्या जी सकते हैं।

से उम्मीद के साथ कि आपकी ये सुबह थोड़ी हल्की हो, मुस्कुराती हो और ढेर सारी सकारात्मकता से भरी हो। याद रखिए, हर दिन खास नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ खास जरूर छुपा होता है। अपने शहर से जुड़े रहिए, अपने लोगों से जुड़े रहिए और सबसे जरूरी, खुद से जुड़े रहिए। इसी अपनेपन, इसी स्नेह और इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्ते हिसार में, सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते हिसार, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे। अशोक खोसला की आवाज में कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में जगजीत सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहत इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूपकुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चले कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केन त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे। इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

गहरा गहरा नथु खेरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाएगी, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल, कवाली, पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है, तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हैं समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से

0: केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक।

बिल्कुल कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी मैं आज सुनेंगे, सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुना रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो है ही, साथ ही पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं महबूब के बोल, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाए तो चिंता न कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण विविध भारती पर। इन दिनों आप

कई कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे, सच भाई हुए हैं आज बेगाने, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं।
2: अरे कैसे

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हों।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत। यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो

0: सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 1,00,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इसमें ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं, गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नर्म फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप आपकी गरीब।
1: अभी आप विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। हरियाणा सरकार ने करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना तथा उसकी परियोजना प्रबंधन सलाहकार संस्था पीएनसी की अवधि को आगामी 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इससे चल रही परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा तथा निर्मित परिसंपत्तियों को संबंधित विभागों को सुचारू रूप से हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसी तरह फरीदाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना का भी आगामी 31 मार्च तक विस्तार किया गया है। कल चंडीगढ़ में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में करनाल और फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि यह विस्तार केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप दिया गया है ताकि पूर्णता के निकट पहुंच चुकी शेष परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके और नागरिकों को आधुनिक शहरी आधारभूत सुविधाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर एनडीए सरकार पर आरोप लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पेपर लीक हुआ है इसका सबको दुख है, लेकिन केंद्र सरकार बिना किसी देरी के सीबीआई से जांच करवा रही है और बहुत लोग पकड़े जा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि इसके बाद पेपर लीक करने के बारे में कोई सोचे।

0: और दो नगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन निगम में पहले भी भाजपा ने ही जीत हासिल की थी। पूर्व मुख्यमंत्री रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सांपला नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव न लड़ने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने पहले भी कभी पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सांपला में भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को सिर्फ 34% वोट मिले हैं, जबकि 66% वोट विरोध में पड़े हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले दिनों में खंड स्तर तक संगठन बढ़ाया जाएगा। हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुओं के लिए 11वें चरण के संयुक्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में गाय और भैंसों को मुंहखुर और गलघोंटू जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए एक ही वैक्सीन लगाई जा रही है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिसार के उपनिदेशक डॉ. रविन्द्र श्योरान ने बताया कि इस अभियान के तहत हिसार जिले में भी 4 वर्ष से अधिक उम्र के पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है।
1: हमारी टीमें वैक्सीनेशन पर निकल चुकी हैं। पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 5,36,000 एनिमल्स को, गाय भैंसों को हमने टीकाकरण करना है, जिसके लिए हमारे 90 जीवित हैं, पशु अस्पताल है, उसकी 142 टीमें बनाई गई हैं। वो सभी टीमें घर घर जाके अपना वैक्सीनेशन करेंगी। अब की बार वैक्सीनेशन जो भी डाटा है उसको पोर्टल पर हमने चलाना है। जिस भी पशु को हम वैक्सीनेशन करेंगे उसका मोबाइल नंबर पे एंट्री करते ओटीपी आएगी, ओटीपी लेके हम उसका पूरा डिटेल भरेंगे। दो बीमारियों का इकट्ठा टीकाकरण है, जो कि इंडिया में सिर्फ हरियाणा स्टेट में शुरू किया गया है और किसी स्टेट में दोनों का इकट्ठा नहीं, वो अलग अलग होता है। एक तो मुंहखुर की बीमारी है हमारी और एक गलघोंटू की बीमारी है।
0: उन्होंने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि निःशुल्क टीकाकरण का लाभ उठाएं, इससे दूध कम होने या बच्चा गिरने का कोई खतरा नहीं है। सावधानी के तौर पर 7 महीने से ऊपर की गर्भवती भैंस और 6 महीने से ऊपर की गाय को टीकाकरण से बाहर रखा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, एक बार फिर आनंद लीजिए विविध भारती के प्रसारणों का।

0: हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारे एक साथी कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गांव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो जरूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीजी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, चुपम छुपाई, पोसंपा, लड्डू कंचे, माफ कीजिएगा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोल पुलिस कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी की गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफर में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मजा नहीं आता जो रेल की गाड़ी में यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी भी के घर में नानी को ज्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो जरूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कहने कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। जमीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रखकर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में भाई। इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुझती हुई तेज गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफर करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफर सुहाना हो हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई, जान किस अदा से, जान किस अदा से देखा मेरी।

मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, जान किस अदा से, जान किस

हो गई मेरी छुट्टी हो गई क्या मेरी छुट्टी हो गई जाने किस अदा से हाँ जाने किस अदा से देखा मेरी छुट्टी हो गई वाह।

0: बाद अपनी हो गए सगाई सबके छुट्टी हो गई, अपनी हो गए सगाई सबके छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई क्या मेरी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं। और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं है, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूं, एरोप्लेन की आवाज आती है तो ऊपर देखता हूं, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूं, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूं। एक साथी ने बताया है कि बचपन में पकड़म पकड़ाई बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करती थी। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई कोकोनट रंग पूछने वाला खेल चोर सिपाही खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले की बच्ची लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था, ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया कबड्डी लुका छुपी मार दड़ी क्रिकेट फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से झलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटी थी तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है, कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए, तो आप हमें बताइए। तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है, गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहां सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहां जाएं, और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें, जहां के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है, और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते, कभी कभी तो चोट भी लगती थी। और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे, हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने की बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब

0: बचता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना, ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था और हम दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह है और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था, ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आ वा वा वा। ये कैसे चले लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ सब खड़े, ला ला ला ला ला लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जा पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, घर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
4: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक जीन, एक घोड़े की नाल, एक भीवर का जाल, एक लहसुन निकालू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक ब्री, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया। चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन कालू, एक घीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक जीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
4: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
4: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16:30, 15:15, दूना 30, 43, 44, 44, 75, 96, 97, 95, 98, 20, नंबर 25, गले में रस्सा।
0: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी, गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं, खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते, एक घर के सहायक थे हम लोगों के साथ रहते थे, मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी, उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था, दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी। लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन

बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं है, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि, वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी में बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही है कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे

झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए, क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है, और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना है, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने की नानी की डांट तो नहीं पड़ी, पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ, कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है, तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

मैंने मैं तो

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे नहीं, लेकिन से पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे, हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए छोटे से रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म कड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा, वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहां चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि

कौन कौन से गीत हो सकते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तब भी बना हुआ है। और हमारे कौर साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वी मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो तो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैड साहब, फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसा इसमें कहा गया भी, समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है, तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जनजागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए

0: बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण करो।
1: तुम राजे गृह लक्ष्मी, धर्म साक्षी।

0: তো আজি থাকুক মেদিনী ভীম পদার হাতে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম।
1: वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
2: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन।

0: बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिम, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
1: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड

0: सरकार को बताया, लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
1: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
0: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है, जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
0: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस सही

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी के प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।

0: यूए के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर की। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी

0: निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विद्युत सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की ईगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार

0: और इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। कुमार बाराबंकवे ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला की इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनेगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: गोपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, बोलो ना।

जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। अरे अरे डॉज गाड़ी की इंजन की कसम,

0: प्यार नहीं तो दुनिया में फिर बोलो क्या है रखा।
1: अभी है जवा, दुनिया का कुछ नहीं है बड़ा चक्का।
0: प्यार नहीं तो दुनिया में फिर बोलो क्या है रखा।
2: रुक सब तो रुको हमको, रुक सब तो रुको हमको, हम तो नैना चार करेगा।
1: नहीं

दिल का।

0: भी हुआ है और न होगा, देखो मेरे जैसा।
1: पहले तो दिल फेंक कभी ना देखा ऐसा वैसा।
0: कभी हुआ है और न होगा, देखो मेरे जैसा। मानो या न मानो हम तो

0: हेलो हेलो अरे हेलो हैदराबादी, कलकत्ता तू के आगरा और बंबई हो गया शादी। अरे हेलो हेलो हेलो।
1: राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना। अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपको कॉल लगा है?
1: जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3 वर्ष बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ।

0: जो हम इस पे काम कर रहे हैं।
1: क्या बात है, मिलेट्स यानी फिर रागी है, जवार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
0: जी।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
0: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, आने तो आप अकेले पड़ जाओगे, तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
0: बिल्कुल। मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा सब बड़ा हो गया, जैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की मूवी है यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
1: जी मेरा नाम वर्षा भगत है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और उसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शो होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है। ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंचे। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती हैं।
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सुना लीजिए आपने जी।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं
2: ये पर्दा हटा दू, जरा मुख ना दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुख ना दिखा दो।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़
0: से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउस वाइफ हूँ। मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप? कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती है।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी किरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी।
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी
1: के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सच में, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी बहुत।
0: और विविध भारती सुनती है आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: खुशी मिलती, खाने को आते जाते हो, अच्छा खाना बनाए बोलते हो, कभी कम ज्यादा हो जाता है।
0: और सच में जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: खाने की तो अच्छी से आपने थकान जाती है बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत से फल मिलता ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश,
1: गाने सुनते हो? रहता रेडियो दिन भर
0: रेडियो चालू रहता। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का एक गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: राजभाई, राजभाई धाकड़।
0: राजभाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: हाँ, गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करें अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सच में चले परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
1: अच्छा लगे, देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती है कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनते हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो बड़ी दो बड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विद्युत भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते। मेरा
0: क्या नाम है आपका?
1: नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहिणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी नीला भोले
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर का काम संभाली।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप? कभी खुद की खुशी का काम करती है आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती है अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे बच्चों का करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: खेत में जाना पड़ता
0: है, खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन गाना
0: है? हम आपके हैं कौन फिल्म का? माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद सती से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउस वाइफ है और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहते हैं।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं।
0: क्या बात है, आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
1: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
0: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपने हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी?
0: जी। और आपने पसंद
1: दो महीना से छटपटा रहे थे, ये कम दो महीना पूरा होगा।
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रताप गढ़ है, पास तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ। मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी सर्विस सेंटर में हूँ। मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ। 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इस वास्ते में 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
0: क्या बात,
1: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल से है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में जाता है
0: जी।
1: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन,
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकिया का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
0: क्या बात है,
1: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
1: जरूरी है, बराबर है
0: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
1: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
1: धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोला रंग का लामा पड़ जाए।

रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखी आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867 0288, 2867 0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थी, इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थी। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आठों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल गाय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही मिल बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगे का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तो गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात है। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका है। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती है, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही है, तो अभी भी कर सकती है। जबलपुर सिहोरा यू भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत है तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर

कैंपस में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

घेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई, ये हमेशा दबे पांव ही आती है, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम, बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे, जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्य भी प्रसन्न थी, यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था, वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम के घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थी। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं ही सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हो, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था।
इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहां हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंचे।

जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया रिक्शा यही रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहे इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकंत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकंत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी है, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकंत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकंत तब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकंत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकंत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ, नीलकंत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकंत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए।
सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था।

आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पोंछ रही थी और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। आकाशवाणी का ये हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हर दिल अजीज कार्यक्रम।

Instagram, Hello Hisar.

0: दोस्तों, बाहर का मौसम खूबसूरत हो, हाथ में चाय की प्याली हो और फिर हो हेलो हिसार का कार्यक्रम, जिसमें चलते हो आपके मनपसंद तराने आपकी और हमारी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो क्या ही बात है, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेलो हिसार आपके साथ।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरिमिरी कुरासिया कालरू जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार, हेलो हिसार में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी परेड में हूँ मैडम और यहाँ पर नर्सरी के बीच में खड़ा हूँ, जंगली नर्सरी बीच में। अच्छा। मौसम में आज तो सुहाना है मैडम, बादल किया है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। उमस गर्मी तो था लेकिन क्या कीजिएगा, तो मौसम में परिवर्तन होते रहता है।
0: जी,
1: तो आज मैं दिशा मूर्ति के मनोरंजन के साथ में अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात, अमिताभ बच्चन और राखी जी का फिल्म का गाना है बरसात की एक रात।
0: ठीक है।
1: और गाने के बोल है मन चली ओ मन चली कौन सी ये गली, गाय किशोर कुमार आशा भोसले।
0: जी जरूर, आपने सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया।
1: और सबसे पहले गीत आपको किन निर्देश साहब को, पूरे भारत और श्रोता को, आकाशवाणी हिसार में जुड़े सभी लोगों को, अपनी परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को
0: फिल्म बरसात की एक रात से गीत आपको भेज रहे हैं। आप सुनिए और फोन किया इसके लिए बहुत धन्यवाद।

0: हाँ जी बहन जी नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
0: हाँ जी, मैं नथुराम शर्मा कालावाली मंडी जिला सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है नथुराम जी आपका, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक है जी, आप कैसे हैं? रितु मैम बोल रही हैं क्या?
1: जी जी, मैं रितु कौशिक बोल रही हूँ।
0: बहुत नमस्कार जी बहन जी।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेलो हिसार कार्यक्रम में।
0: और ठीक हो?
1: हाँ जी हम बढ़िया हैं, और बताइए आप कैसे हैं, क्या करते हैं?
0: मैं तो जी चाय की ये दुकान है जी मेरी मंडी के अंदर।
1: जी जी बताया था आपने।
0: हाँ जी हाँ जी, आपकी जो वो सुनने को मिलता है जी आप बहुत बढ़िया है जो शेर शायरी वाला जी।
1: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। बता दीजिए आज नथुराम जी कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं आप?
0: गीत जी इज्जत फिल्म है जी, मोहम्मद रफी साहब का गाना है जी, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे।
1: जी जी जी, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: राम अवतार वर्मा जी, ऑटो मार्केट हिसार।
1: हाँ वर्मा जी, वर्मा जी, ऋतु कौशिक बोल रहे हो ना?
0: जी मैं ऋतु कौशिक बोल रही हूँ, कैसे हैं आप?
1: अभी मैं आपका वो प्रोग्राम सुन रहा था तो आपने हेलो वो हिसार वाला।
0: जी नमस्ते हिसार सुन रहे थे?
1: हाँ जी नमस्ते हिसार, अभी सुन रहा था, फारिग हो गई है, आपसे बात कर रहा हूँ।
0: चलिए और बता दीजिए काम काज कैसा चल रहा है आपका?
1: हाँ बस कृपा आपकी जी, और अपनी बात भी कई दिनों बाद हो रही है आपके साथ तो।
0: जी जी बस ऐसे ही है, कभी आप फोन पे नहीं मिलते कभी हम ड्यूटी पे।
1: हरियाणा से तो मेरा 2 हफ्ते पहले हुई थी बात।
0: जी बताइए राम अवतार जी, कौन सा गीत है जो आज सुनवा दे हेलो हिसार में?
1: आज जी आपने आपने शोर फिल्म के सारे गाने चला दिए होंगे, उसमें एक गाना ऐसा है
0: जी
1: वो नहीं बजता किसी भी स्टेशन पे,
0: आप बता दीजिए, आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं हम आपको।
1: जी बनके तू लैया आज चली हूँ मैं साजन के द्वारे।
0: चलिए आज आपकी पसंद पर ये गुम हुआ गाना सुनवाते हैं हम सभी श्रोताओं को।
1: अभी जनता में ये चलता रहे ना ये गुम हुए गाने भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भूले बिसरे गीत। धन्यवाद।

0: हेलो हिसार,
1: जी हेलो, हिसार से बात कर रहे हैं हम। स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं?
0: नमस्कार जी। जयवीर
1: नमस्कार,
0: प्रजापत बोल रहे जी, गांव सांगा
1: कैसे हैं जयवीर जी? क्या करते हैं वहाँ?
0: जी। बस कुछ नहीं करते, अब तो जी गर्मी हो रहा जी।
1: अच्छा जी, मौसम तो
0: हाँ
1: बदलेगा ही अब, और कभी कभी बारिश भी हो जाती है। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है
0: हाँ हल्की फुल्की ही हो जाए जी।
1: जी। और बताइए जयवीर जी, किस तरह के गाने सुनते हैं हेलो हिसार में?
0: हिसार में जी आप पुराने गाने सुना करा जी। अच्छा
1: बता दीजिए आज कौन सा सुनेंगे।
0: पहले आप बताओ जी कौन बोल रहे हो जी। हाँ
1: मेरा नाम रितु कौशिक है।
0: ऋतिक रोशन का आवाज से तो लग रहा था। फिल्म का नाम तो चित्ता उतर गया। गाना के बोल रहा जी, राज जी छूटे ना तुमसे सनम,
1: जी
0: राज जी छूटे ना तुमसे सनम। है
1: ठीक है, आपके पसंद पर हम भी

0: भेज रहे हैं ये
1: हाँ जी,
0: बताइए
1: जैसे नाम बताऊंगा जी,
0: जरूर।
1: पूर्वी शिवराज, मनोज दुर्गेश, प्रमोद शुभम,
0: अच्छा
1: सुमित्रा और नीलम और संतरा, मास्टर राम भगत जी और अनिता जी।
0: चलिए आप सबके साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का गीत, सुनना चाहते हैं जो आप, और बहुत बहुत धन्यवाद फोन किया आपने।

0: ठीक ठाक हूँ जी, दुकान में बैठे हैं जी, काम करे जी, गाड़ियों का मिस्त्री हूँ जी मैं।
1: अच्छा, गाड़ियों के मिस्त्री हैं?
0: हाँ जी।
1: चलिए, तो काम करते करते सुनते रहते हैं रेडियो?
0: जी बिल्कुल, काम भी करते रहता हूँ, रेडियो अपना पास में रखा है, बजार बजता है जी।
1: और बताइए, कौन से प्रोग्राम हैं जो सुन रहे हैं आप और अच्छे लग रहे हैं आपको?
0: जी मैं रोहतक करता हूँ, यहाँ पर काफी आसपास के हैं जी वर्कर काम करने वाले।
1: कौन सा गीत सुनेंगे बता दीजिए
0: जी मुझे? आज जितेंद्र प्राण और नीतू सिंह का फिल्म आ गया, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले की आवाज में वक्त की दीवार फिल्म का गीत सुना था जी।
1: कौन सा गाना?
0: जादू सा छाने लगा है, दिल गुनगुनाने लगा है।

0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, हेलो हिसार में स्वागत है आपका बहुत बहुत। कौन बोल रहे हैं आप?
0: जी हम आपके नियमित श्रोता साथी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जांगड़ा जी, पहले भी कॉल्स आई हैं आपकी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बताइए क्या करते हैं आजकल?
0: फिलहाल तो खेती बाड़ी का काम अभी नहीं है, मतलब सब कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी ज्यादातर घर में आराम करना होता है।
1: अच्छा, मतलब खेती बाड़ी का काम रहता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता होगा तो आराम की फुर्सत नहीं मिलती होगी आपको, है ना?
0: जी
1: क्या क्या लगा रखा है खेतों में इस वक्त? कुछ भी नहीं है?
0: नहीं, अभी कहने का मतलब है कि पिछला फसल वो सब कंप्लीट हो गया है, अभी खेत खाली है, अभी कुछ भी
1: अच्छा,
0: नहीं है।
1: अब अगली फसल क्या बोएंगे?
0: धान लगाएंगे जस्ट 15 जून के आसपास।
1: अच्छा, तो योगेश जी, रेडियो का शौक कब से है आपको?
0: मुझे लगभग 22-23 साल हो गया जुड़े हुए, और अभी
1: अच्छा,
0: 35 साल का हूँ,
1: कितने साल के हैं?
0: 35, 35।
1: अच्छा, और 22 साल जुड़े हुए हो गए आपको, मतलब
0: हाँ
1: बचपन से
0: जी,
1: सुन रहे हैं आप लगभग।
0: लगातार फोन इन कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सुनते तो कृषि वगैरह के भी कार्यक्रम हैं,
1: जी,
0: लेकिन फोन इन में सबसे ज्यादा दीवानी है।
1: तो आपके परिवार में पहले भी आपके पिता या दादा सुनते थे रेडियो, जिससे
0: हाँ
1: आपको शौक हुआ?
0: जी, पिताजी लोग सुनते थे, और पहले बड़ा बड़ा रेडियो भी था घर में।
1: जी, पहले रेडियो सेट हुआ करते थे, आजकल तो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा
0: जी
1: योगेश जी जान के। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज हेलो हिसार में?
0: फिल्म कभी कुछ कभी खुशी कभी गम का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए।
1: जी जरूर, इसका टाइटल सॉन्ग भेज रहे हैं हम आपको योगेश जी, और करते रहिएगा ऐसे ही, जुड़े रहिएगा हमसे।

0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं राधेश्याम कटारिया, श्री करमपुर जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं? राजस्थान का मौसम कैसा है आजकल?
0: आज तो मौसम खराब ही है मैडम,
1: अच्छा, आंधी बांधी चल रही है?
0: धूल भरी आंधियों वाला है।
1: अच्छा, आजकल मौसम के मिजाज कुछ बदले बदले से हैं। कभी गर्मी हो जाती है, रात को ओले पड़ जाते हैं, फिर सुबह फिर धूप हो जाती है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी, मौसम तो अब गर्मी में तो ऐसा ही रहेगा।
1: हाँ, चलिए बताइए राधेश्याम जी, और क्या चल रहा है?
0: बस मैडम, गर्मी रहते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, मस्त रहते हैं, संगीत सुनते हैं।
1: चलिए बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
0: आज है मैडम साहेबजादे का गाना है,
1: कौन सा गाना है?
0: कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, ओ बेलिया मेरा लोग खो गया ढूंढ के ला दे।
1: अच्छा ठीक है, राधे श्याम जी भेज रहे हैं आपकी पसंद पर आपका ये गीत, आप सुनिए और जुड़े रहिए हमसे ऐसे।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो। हाँ जी हेलो सर, में स्वागत है आपका बहुत बहुत। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते रितु कौशल जी। हाँ
0: अरे वाह, आपने तो आवाज़ पहचान ली।
1: जी, गांव बड़ुआ जिला भिवानी तहसील सुवानी से विनोद निंबेवार बोलूं जी।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: अच्छे, मैं खेत में काम करके आया, रोटी खाने लग रही है मैम।
0: अच्छा, रोटी खाते खाते आपने कॉल किया हमें।
1: हाँ जी, और आपकी रिकॉर्डिंग याद आ गई जी।
0: चलिए, बढ़िया, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इतने व्यस्त दिनचर्या में से भी टाइम निकाल लेते हैं और हमसे जुड़ते हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: बताइए क्या कर रहे हैं खास, कुछ खेती के अलावा?
1: यही खेती बाड़ी का काम चल रहा है जी।
0: गीत कौन सा सुनेंगे आज हेलो हिसार में?
1: ये सुना जी, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे।
0: धन्यवाद, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं गीत।

0: आज के हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पवन कुमार, तकनीकी सहयोग रहा केवल कृष्ण जी का। इसी तरह आपके मनपसंद गीतों के बहार लेकर हम आते रहेंगे। प्रोग्राम हेलो हिसार में आप सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार, हिसार।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं ऐतिहासिक नगरी हिसार की संगीतमय पहचान आकाशवाणी हिसार 102.3 FM।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं ऐतिहासिक नगरी हिसार की संगीतमय पहचान आकाशवाणी हिसार 102.3 FM।
3: आकाशवाणी at 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, ये तो सुनिए आपने संदेश, और इससे पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार। आकाशवाणी का ये हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और दुर्लभ का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुमलालौत वित्तदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है आकाशवाणी का हिसार केंद्र FM बैंड 102.3 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। पहले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, आज शाम 6:10 पर आप सुनेंगे हिंदी प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम भक्ति संगीत का समय रहेगा 6:20 का। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम युवा उमंग आप सुन सकते हैं आज 6:30 पर। कार्यक्रम खेती किसाना सेती का समय रहेगा 7:00 का। गांव की माटी से जुड़ा कार्यक्रम म्हारी गांव प्रसारित किया जाएगा आज 7:30 पर। कार्यक्रम पंजाबी लोकगीत आप सुनेंगे आज रात 8:00। तत्पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश। राष्ट्रीय हिंदी समाचार आप सुन सकते हैं आज रात 8:45 पर। तत्पश्चात रात्रि 9:00 सुनिएगा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। श्रोताओं, व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपकी गीत हमारी प्रसारित किया जाएगा आज रात 10:00। हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं आज रात्रि 11:00। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब खुलासा कल के आकर्षण का। रोजाना की तरह हमारी प्रथम प्रसारण सभा प्रारंभ होगी कल प्रातः 5:55 पर। कल सुबह 6:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार। 6:05 पर कार्यक्रम वंदन वार। श्रोताओं, संस्कृत में समाचार आप सुन सकते हैं कल सुबह 6:55 पर। तत्पश्चात सुबह 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रम लोक रंग का समय रहेगा कल सुबह 7:10 का। तत्पश्चात सुबह 7:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। समाचार प्रभात सुनेगा कल सुबह 8:00। तत्पश्चात 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम नमस्ते हिसार का समय रहेगा कल सुबह 10:00 का। तत्पश्चात कल सुबह 11:00 से आप सुन सकते हैं विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम संदेश आपकी गीत हमारी आप सुनेंगे कल शाम 5:00। हिंदी में समाचार का समय रहेगा कल शाम 6:00 का। 6:10 पर कल सुनिएगा हिंदी प्रादेशिक समाचार। कल शाम 6:20 पर आप सुन सकते हैं प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत। कार्यक्रम युवा उमंग का समय रहेगा कल शाम 6:30 का। 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी और 7:30 पर म्हारी गांव कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, कल रात 8:00 सुनिएगा परिक्रमा। 8:30 पर कार्यक्रम खुला आकाश आप सुन सकते हैं। तत्पश्चात 8:45 पर हिंदी में समाचार एवं रात्रि 9:00 सुनिएगा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं कल रात 10:00। ये थी जानकारी आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से FM बैंड 102.3 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:10 पर आप सुनेंगे हिंदी प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी की चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CVT माध्यम से होगी। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, BBMB कर्मचारियों की मांगों पर

सहानुभूति से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की और हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल

0: समझता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा,
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि परीक्षा के लिए फिर से कोई फीस नहीं ली जाएगी और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने कहा,
1: सीबीआई तहत तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है, हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, राजस्थान व पंजाब के सिंचाई मंत्री, मुख्य सचिव पंजाब व अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिमा बराड़ व मनोज त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा,
2: जो हमारा भाखड़ा डैम है उसके प्रबंधन के लिए ये संस्थान बना था 15 मई 1976 में। आज 15 मई 2026 ठीक 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 50 वर्ष पूरा होने पर 51वां स्थापना दिवस आज ये लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए और मुझे बुलाया गया। तो बहुत अच्छे प्रकार से जो हमारी जो इंजीनियर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हम इस सारे प्रोजेक्ट के प्रबंधन की सराहना भी की।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। जो भी कमियां हैं उन्हें बोर्ड से परामर्श करके पूरा किया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें बीबीएमबी कर्मचारियों की मांगे मिली हैं, उन पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। अभी सिर्फ कैशलेस इलाज की घोषणा की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग का संदेश भी दिया। आकाशवाणी चंडीगढ़ ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल चंडीगढ़ में वॉकेथॉन का आयोजन करेगा। यह वॉकेथॉन सुबह 6 बजे सुखना लेक पर आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। इस उपलक्ष्य में मई माह में देशभर के केंद्रों में वॉकेथॉन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आकाशवाणी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। आज तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए सिरसा से विशेष रेलगाड़ी सिख श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह विशेष रेल हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा,
3: आज इस तरह से सचखंड नांदेड़ साहब के लिए हरते श्रद्धालुओं का एक जत्था और थे तीर्थ नवान ले जा रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े फखर की गल है।
0: जिला प्रशासन द्वारा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार के इस प्रयास के लिए प्रशंसा की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने

0: की घोषणा की है। चंडीगढ़ के मतदाताओं की अंतिम सूची इस वर्ष 22 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। तीसरे चरण के तहत SIR देशभर के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल हैं। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने कहा कि 614 बूथ स्तरीय अधिकारी 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर जाकर शहर के 518,000 और 663 मतदाताओं का विवरण इकट्ठा करना शुरू करेंगे।
1: पहला जो चरण है इसमें वो है हमारा ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का, और ये जो प्रिंटिंग का जो कार्य है ये हमारा 5 जून से लेकर 14 जून तक ये कार्य होना है। उसके बाद एक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होनी है बाय द बूथ लेवल ऑफिसर्स, और ये एक महीने का समय है, 15/6 से लगभग 14 जुलाई तक का। उसके बाद क्योंकि हमारे को इसके हिसाब से पोलिंग स्टेशन को रैशनलाइज करना है ताकि हर पोलिंग स्टेशन पे 1200 से अधिक मतदाता ना हो, उससे कम ही हो, या अप टू 1200 मतदाता ही हो पोलिंग स्टेशन वाइज। उसके अलावा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन है जो कि 21/7 को की जाएगी। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का लगभग एक माह का पीरियड है, 20 अगस्त तक का। उसके बाद फाइनली क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को डिसाइड किया जाएगा और 22/9 को फाइनल पब्लिकेशन की जाएगी।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR के माध्यम से पात्र और अपात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी।
1: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाए ताकि जो हमारी मतदाता सूची है वो सटीक हो, शुद्ध हो, समावेशी हो, और जो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो ना हो। जिन लोगों की पात्रता नहीं है उनको उसमें से हटाना है और जो पात्र हैं उनको उसमें लाना है।
0: हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रदर्शन एनीमिया को कम करने के प्रति राज्य की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने 86.5 के AMB इंडेक्स के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा 5वें स्थान पर था, जिससे इस वर्ष की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि बहुआयामी रणनीति का परिणाम है। AMB स्कोर कार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 2 सप्ताह से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारी कल काम पर लौट आए। ये कर्मचारी 1 मई से हड़ताल पर थे। इसी के साथ अग्निशमन विभाग के हड़ताली कर्मचारी भी काम पर लौट आए हैं। प्रदेश सरकार के साथ हुई वार्ता में मांगों को लेकर सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, BBMB कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से FM बैंड 102.3 MHz पर। अभी आपने सुनी हिंदी प्रादेशिक समाचार। आइए अब सुनते हैं प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत। आकाशवाणी का ये हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम युवा उमंग का 1285वां एपिसोड।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
1: और मैं अजीत। नमस्कार। राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
0: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
0: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
0: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
0: जी जी जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
0: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
0: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओ, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
0: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोलकर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
1: जैसे
0: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से यह संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ।

खा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें खातू बुलाती हूँ। कभी कभी खातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं, मैं हॉर्न बजाती हूँ। पम पम रास्ते की सब बकरियाँ और गाय दूर हट जाती हैं।

0: हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। खाता की दांत नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची ऊंची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती भागती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराती है। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्धनायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे।

0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों,

0: जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
1: जी सर।
0: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सी सर।
0: बोले सोनिहा
2: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
3: तेजा सिंह और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
4: हैं साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।

0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
1: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला

कहाँ हैं? सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम युवा उमंग का 1285वां एपिसोड। आइए अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम है किसान भाइयों का पसंदीदा खेती किसाना सेती।

0: खेती किसाना शेती कार्यक्रम सुन लिए सारे बाण भाइया ने। आजाद भाई की राम राम। खेती बाड़ी में बहुत नए नए प्रयोग होते जा रहे हैं। जोर का काम कम रह गया, आज तकनीक का काम ज्यादा आ गया। हमारे बुजुर्गों ने जोर तक काम करा, कसी कसोले खुरपे, लेकिन जो काम करा वो निग्गर करा, उस टाइम के अन्न में मिठास रहा। लेकिन जैसे आधुनिकता के दौर में हम चले, रासायनिक खादों का दवाइयों का ज्यादा प्रयोग किया, जिससे अन्न का मिठास कम हुआ, आज फिर वो टाइम आ रहा है। बुजुर्गों के ज्ञान और आज के विज्ञान को जोड़ के जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त खेती को अपनाना आज टाइम की जरूरत है। पुराने टाइम के हमारे बुजुर्ग बाप दादा परदादा बड़े ठाडे रहे, क्योंकि उन्होंने खूब कमाया, बहुत अच्छा खाया और मोटे अनाज का वो ज्यादा प्रयोग करा करते। आज दुनिया के स्तर पे भी इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मोटे अनाज की ताकत मोटी हुआ करे, क्योंकि वैज्ञानिक दौर में हम थोड़ा सा फास्ट फूड या दूसरी तरह के भोजन खाने लग गए, लेकिन आज फिर वही पहचान हमारी बनी है, मोटे अनाज। बाजरा है, ज्वार है, रागी है, बहुत से ऐसे अन्न हैं जो हमारे शरीर ने ताकत के साथ रोग रोध क्षमता भी प्रदान कर रहे हैं। हमने जोर देना है कि मोटे अनाज का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और उपभोग भी करा जा, खाया जा, जिससे हमारा सेहत स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। भाई बात खूब बतलाऊंगे, लेकिन पहले भाइया ने रागनी सुनवाऊंगे।
1: अरे मन का भेद बता दे गोरी, पूछे से

0: कृषि सोच को अपना के बागवानी ते अच्छा फल उत्पादन ले सके हैं। एक अभियान चल रहा है बागवानी मिशन, और इसमें उच्च स्तर के पौधे चाहिए। उच्च स्तर के पौधे अच्छा फल उत्पादन दे पाओगे। प्रगतिशील किसान से मुलाकात के तहत आज हम दैमण में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं। आपका नाम जी?
1: मैं फूल कुमार, गांव दैमण।
0: फूल कुमार जी, एक जन्नत बना रखी है आपने बागवानी अभियान में। नर्सरी हो या बागवानी की बात करें, या सोच और शुरुआत कब तक करी?
1: ऐसा था सर, मैंने 78 में HAU से एग्रीकल्चर की डिग्री ली थी। उसके बाद में मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अरुणाचल चला गया, तो वहाँ कुछ घरेलू परिस्थितियाँ हुए, दूरी के कारण मैं सर्विस बीच में छोड़ के अपने गाँव वापिस आ गया। मेरे पास 12 एकड़ जमीन और पानी था, मगर यही अपनी देसी बाजरा, ग्वार, ज्वार, ये फसलें होती थी। मैंने उस सोच को बदला और इस गांव में, इस एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में ही लगा लो, फतेहाबाद में पहली बार एक 2006 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन से मिलकर एक बगीचा डाला, जिसमें आड़ू, आलू बुखारा और अमरूद, तीन मुख्यतः फलदार पौधे लगाए। मेहनत की और विशेषज्ञों की सलाह से हमने काम किया। भगवान की दया से 4 साल में हमारा बगीचा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अव्वल आया। उसके बाद में काम चलता रहा, विशेषज्ञ मिलते रहे, बागवानी विभाग की तरफ से टूर मिलते रहे, भारत के विभिन्न राज्यों में जाने का अवसर मिला, वहाँ से सीखा और यहाँ प्रयोग किया। अब मेरे गाँव की 2200 एकड़ जोत में से 400 एकड़ में ग्रीन पट्टी है, जिसमें अमरूद के बगीचे लगे हुए हैं।
0: फूल कुमार दहिया जी, आपकी सजग सोच शुरुआत से दैमण, बेजलपुर, खैरी, नैला, शिवानी, गोरखपुर के इलाके में बागवानी में अच्छी पहल की शुरुआत हुई है, आप बधाई के पात्र हैं। अब आपकी नर्सरी और बागवानी में क्या क्या के पौधे हैं?
1: मुख्यतः तो हम जो हमारे पास मदर प्लांट है, इशार सफेदा अमरूद, इशार सुरखा, सियाने पंजाब आड़ू जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था, सतलुज पर्पल, आलू बुखारा जो लुधियाना यूनिवर्सिटी का है, मुख्यतः तीन पौधे हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बगीचे लगे हैं, जो जमींदार आके बगीचा देखते हैं और पौधे पसंद करके ले जाते हैं।
0: जिस सोच के साथ आपने शुरुआत करी थी, पेटा भरा?
1: कई साल वहाँ सर्विस छोड़ने के बाद में बाजारों में दाएं बाएं कुछ छोटा मोटा काम किया, मगर वहाँ सही सेटिंग नहीं हो पाई। फिर सोचा कि क्यों न अपनी जमीन और पानी को प्रयोग करके कोई अच्छी उपलब्धि हासिल की जाए, तो हम इसमें लगे और हमने अपना एक बढ़िया मुकाम हासिल किया है।
0: आपने बताया कि इशार सफेदा, इशार सुरखा, अमरूद, यहाँ का जाना पहचाना बड़ी अच्छी क्वालिटी और वैरायटी का पौधा है, तो इस अमरूद की क्या खास बात है?
1: इसमें खास बात यह है, एक तो ये 2 साल के अंदर कमर्शियल हो जाता है, जमींदार का जितना भी खर्चा लगता है 2 साल में ये आमदनी देने लग जाता है। और एक मुख्य विशेषता इसकी यह है, इसमें बेहद मिठास, चमक और अच्छी कैलोरी, विटामिन भरपूर है इस जो नस्ल का अमरूद है।
0: आपने खुद कितना बाग लगाया?
1: मेरी खुद की जमीन 10 एकड़ के करीब है, उसमें सारे में ही बगीचा है, और अब 12 एकड़ जमीन आगे उसी शिवानी रोड पर लीज पर ली है 15 एकड़ में, 15 साल के लिए, अब उसमें भी सारे में बगीचा ही डाला हुआ है, जो 2 साल का अब की बार फ्रूट पे आ जाएगा।
0: आपकी उम्र 65-70 साल के करीब है?
1: हाँ, यही।
0: बालक शिलक इस काम को आगे बढ़ा रहे?
1: हाँ, एक लड़का है वो इसी काम में लगा हुआ है, जो बगीचा संभालता है और पौधे तैयार करवाता है।
0: बागवानी अपनाते समय के सावधानी, मिट्टी पानी का तजर्बा होना चाहिए?
1: मिट्टी पानी तो हमारे पूर्वजों ने इसी मिट्टी पर गुजारा किया है, मुख्यतः हमें पता ही होता है वह हमारी मिट्टी में क्या दम है, क्या कमी है, बाकी कोई अनसूझी बात होती है तो विशेषज्ञों की सलाह ले ली जाती है।
0: बहुत अच्छा प्रयास है आपकी बागवानी, आपका फल उत्पादन, आपकी सोच बड़ी सजग है। किसान को क्या करना होगा अपने फल, सब्जी, अन्न आय उत्पादन के लिए?
1: अब की बार बजट में हरियाणा सरकार व अपनी केंद्र सरकार ने जमींदारों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। पहले सब्सिडी थी, मगर अब की बार बहुत ज्यादा सब्सिडी कर दी है, करीबन 1 एकड़ पर

0: एक जमींदार को बगीचा लगाने में 40,000 के रुपए के करीब दे देते हैं
1: जी,
0: जिससे जमींदार तो इस हौसला भरकर और भी आगे बढ़ा रहे हैं इसको।
2: किसान भाई आपकी बात को रेडियो इशार के माध्यम से बहुत दूर दराज के इलाके में सुन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे?
0: यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो साइंस का टाइम आ गया, एग्रीकल्चर पर भी साइंस लागू होगी, पानी की कमी है, उबड़ खाबड़ जमीन जहाँ है वो ड्रिप सिस्टम टैंक बनवा कर सरकार जीरो बैलेंस पर टैंक बनवा रही है, ड्रिप सिस्टम करवा रही है, पौधों के लगवाने मदद करती है, हर तरफ से मशीनरी भी मुहैया करवाती है। तो आप इस अपनी परंपरागत खेती को छोड़ के इस नई तकनीक से जुड़े हुए अपनी आमदनी भी बढ़ाएं और जो आसपास गरीब वर्ग है उसको भी काम दें।
2: लोग बागे शहरों से दूर फार्म हाउस बना रहे हैं, आपने दैमन और बैजलपुर में जन्नत बना रखी है, आने जाने वाले लोग आपकी इस हरी भरी हरियाली को देख के बहुत प्रभावित हुए, खेते में आपका रहना सहना खेता में रहना किसा लग रहा है?
0: देखो जी, ये सब बागवानी का काम है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये समझो अब हम यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं तो प्रकृति गोद में बैठे हैं, यहाँ ना कोई बीमारी है, शुद्ध वातावरण है, बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया एलर्जी मिलती है, आने जाने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं, कई बार कई बड़े बड़े ऑफिसर भी मिलते हैं जो कि नोएडा फरीदाबाद दिल्ली में काम करते, वो एक एक घंटा यहाँ लगा के जाते हैं, उनको सुकून मिलता है, उनकी भी दिली तमन्ना होती है भाई हम भी ऐसा ही करें, मगर वो बताते हैं कि हमारी मजबूरी है, अच्छी तनख्वाह मिलती है मगर अच्छी सांस नहीं है इन बड़े शहरों में।
2: देखिए, अच्छी सांस मिले, अच्छा सेहत स्वास्थ्य है तो एक इस तरह का प्रयास होना चाहिए। आपने सजावटी पौधे भी लगा रखे हैं और बिक्री भी कर रहे हैं नर्सरी के माध्यम से, आपके पौधे कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं?
0: हमारा अमरूद, आड़ू, आलू बुखारा जो हमारे मेन तीन प्लांट है, जो हमारे पास बगीचा है कमर्शियल है, वो हमारे तकरीबन इंडिया के अंदर जाते हैं, 10 स्टेटों में तो हमारे पौधों के बिल गए हुए हैं जहाँ पौधे लगे हुए हैं हमारे।
2: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बाग लगाए जाए तो जैसे मान ले आपके यहाँ से पौधे खरीदे तो सब्सिडी मिले?
0: हाँ, उसको मैं पहले बताया ना, पहले सब्सिडी थोड़ी थी इस पे,
2: अच्छा,
0: जिससे जमींदार ज्यादा जागृत नहीं हो रहे थे, मगर अब की बार बजट में एक एकड़ पर 40,000 के करीब सब्सिडी मिलती है जमींदार को।
2: तो इस तरह का एक प्रयास हर किसान भाई ने करना चाहिए, जमीन चाहे थोड़ी हो थोड़ा कर लें, ज्यादा है तो ज्यादा कर सके हैं, लेकिन एक सजग सोच जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बागवानी को अपनाना होगा, तभी किसान समृद्ध हो सके है और आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ सके है। इतने बढ़िया ज्ञान लाभ की जानकारी के लिए श्री फूल कुमार दैया, गांव दैमड़, प्रगतिशील बागवान और किसान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बात खेती बाड़ी की, बागवानी, पशुधन और किसानी की। देखिए, खेती बाड़ी के साथ साथ हमें बागवानी को अगर अपना ले, पहले हमारे पास दूध बहुत ज्यादा हुआ करता, पशु हमने कम रखने शुरू कर दिए, तो उसका कंपनसेशन या प्रतिस्थापन जिसको हम कहेंगे वो फल के रूप में भी करा जा सके है, लेकिन फल मिलेंगे जब हम फल उत्पादन करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए फलदार पेड़ लगाए, एक एक दो दो बूटा लगाया, जिसके फल और छाया आज हम लेने लाग रहे हैं। आज हम पेड़ पौधे लगाओगे बागवानी के, वानिकी के, तो आने वाली आस औलाद और भावी पीढ़ी उनका लाभ उठा सकेगी। आने वाली पीढ़ी हमारे से श्याप मांगेगी कि हमने उनके लिए क्या करा, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए पानी बचाया जिसका प्रयोग आज हम करने लाग रहे हैं। अगर हम पानी का दुरुपयोग यूं ही करते रहे तो आने वाली पीढ़ी को पानी नहीं मिल सकेगा। तो इसी डाल से जमीन जेठ साढ़ में पाड़ पाड़ा करते, साड़ी ने भी छोड़ा करते, जिससे हमारी धरती की ताकत ज्यादा बनी रहा करती। जमीन थोड़ी होगी, चलो खेती भी करनी है, वो पुरानी चीजें तो पुरानी थी, लेकिन आधुनिकता के दौर में हमने जीना है। तो जब भी आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो हमारी जमीन की ताकत को बचाने के लिए गोबर की खाद का, जैविक खाद का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, रासायनिक दवाइयों का भी प्रयोग कम से कम कराया जा। ठीक है भाई, खरपतवार नियंत्रण के लिए लोग बाग दवाई छिड़क दे, कोई ना कोई तो असर उस पर धरती पर आवे है। जाए थे कभी भी आप खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं तो कसी कसोले खुरपे का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करा जा। बूढ़े बुजुर्ग की कहावत है, जिसका हाथ में कणा उसे का धनगणा, जो आते मेहनत करेगा, तकनीक का प्रयोग करेगा, वो खेती बाड़ी में अच्छा मुनाफा कमा सकेगा।

बात खेती बाड़ी की, पशुधन की भी कर लीजा। पशुधन से भी हम अच्छा मुनाफा कमा सके। हम बहुत पुराने टाइम से बहुत अच्छा पशुपालन करते रहे हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ हमारे पास रही हैं। चलो उस टाइम में एक परंपरागत तरीके से हमने उनकी पाला करते, दूध पी लिया, घी काट लिया, लेकिन आज तो दूध या दूध से बने उत्पाद बेच के भी हम अच्छा मुनाफा कमा सके हैं। ये एक स्वयं रोजगार के रूप में भी अपनाया जा सके है। किसी भी काम धंधे को स्वयं रोजगार को बढ़ाने के लिए आप लोन ले सके हैं। प्रशिक्षण में आपको सारी सुविधाएं बता दी जाए, कितनी भैंसों पे आप कितना लोन ले सके हैं, कितनी उसमें सब्सिडी है। कोई भी काम धंधा जब आप कर रहे हैं, नियत के साथ करें, नीति के साथ करें। ये नहीं कि मैंने लोन मिल गया, मुर्गी पर आ दी, फिर उस लोन का दूसरे काम में प्रयोग कर लिया जाए, उसका फायदा नहीं रहेगा। आप भैंस के लिए लोन ले रहे हैं तो एक गांव में उदाहरण बन के दिखा दें कि भाई फलाने आदमी ने भैंसों की डेयरी का लोन लिया था और वो आज इतना ऊंचे चला गया है, उसका काम धंधा इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया है। रीस करें, अच्छी चीजों की करें, जो भाई अच्छा काम

धंधा कर रहे हैं उनसे सीख लेके ज्ञान लाभ प्राप्त करके अपने काम को आगे बढ़ावे। बालक भी बहुत ससु पंजू में रहे कि मैं ये धंधा करूं पढ़ाई लिखाई के बाद। भाई स्वयं रोजगार को अगर आप अपना लेंगे, खासकर पशुपालन, पशुपालन उस जगह पे बहुत अच्छा रहे जहाँ भाई के पास जमीन है और हरा चारा भी हो जाए, गांव में बहुत अच्छी सुविधाएं रहन सहन की भी पशु को मिल सके है, जगह भी उसमें मिल सके है, तो विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेके बैंकिंग की जानकारी लेके आप किसी भी बैंक मैनेजर से भी यह जानकारी ले सके हैं कि उत्तम पशुपालन के लिए कितना लोन मिल सके है, क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं। सजग सोच के साथ अगर आप कोई भी स्वयं रोजगार का धंधा करेंगे तो आपको फायदा पक्का होगा। इस प्रकार से एक बहुत मजबूती सोच के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी काम धंधा करें ताकि अपना गुजारा बढ़िया चल सके। और चलते चलते बता दें पता, कार्यक्रम खेती किसाना सीती द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 125001। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम खेती किसाना सीती समाप्त करने की अपने भाई आजाद दूर ने देनुमती सारे वन भैया ने राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसाना सेती। आकाशवाणी का ये हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। हमारा अगला कार्यक्रम है गांव की माटी से जुड़ा भारी गांव।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: मारे गांव कार्यक्रम सुननी है सारे बाण भैया ने, आजाद भाई की राम राम। खेती बाड़ी का काम धंधा सारदन करा हा, थकार ले आदमी जब घर आवे तो जी करबे गीत संगीत सुनने मिल जा। गामा में बुढ़िया की बैठक हुआ करे, बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक का काम कराया करे, उनके पास सांझ ने थोड़ा बैठ लिया जा। बालक भी स्कूल का काम करके दादा दादी के पास बैठ जा। बालक न्यू देखे हैं कि उनके माँ बाप दादा दादी की किसी की सेवा कर रहे हैं, वो इस तक बात सीखेंगे तो हमारे बुजुर्गों की देखभाल जरूर रखनी चाहिए। बुजुर्ग हमारे घर का गहना है, जो कुछ हमारे पास है वो हमारे बुजुर्गों ने जोड़ा है। इस बात को कदी भी नहीं भूलना चाहिए, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ कराया। एक माँ बाप अपने बालक, बेटा बेटी, पोता पोती, पूरे परिवार ने पाला, लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जा, बालक ने सोचन लग जा कि बाबू की बात कड़वी है ना। बाबू अपनी आस औलाद ने कभी भी कड़वी बात नहीं कह सकता। हाँ, अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए अच्छा मार्गदर्शन दिया करें। बुजुर्गों की बात को बुने गुणे

0: सुने, उनके सेहत स्वास्थ्य का ध्यान अच्छी तरीके से रखें। बूढ़ा सब नवना है, समय का फेर है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा खाया, खूब कमाया, बढ़िया तरीके से खेती करी, अड़की खेती करी। उस टाइम इतनी तकनीक भी नहीं हुआ करती, कुल्हड़ी का बीज बोया। लेकिन बदलती तासीर और जमाने के साथ आज टाइम बदल रहा है। आज विज्ञान और तकनीक का जमाना है। हमारे बुजुर्गों को भी ये चाहिए कि वो जमाने के साथ बदलाव को अच्छे तरीके से स्वीकार करें। अगर मान ले ये राग गाए जा कि हमारे टाइम में नहीं हुआ करता, चलो उस टाइम बहुत अच्छी बातें हुआ करती, उस टाइम काम चल गया था, जमीन भी ज्यादा हुआ करती, भाईचारा अच्छा और सहकारिता से काम कराया करते। लेकिन अब थोड़ा जमाने का बदलाव है, जमाने के बदलाव को स्वीकार करते हुए बालका ने नई पीढ़ी ने अच्छे संस्कार जरूर दें।
1: ए मर्गी

बात घर में काम धंधे की करन लाग रहे हैं। सांझ ने पूरा कुनबा और परिवार बैठ के सलाह बना ले कि तड़के कौन सा भाई कौन सी बेबी के काम करेगी, काम ने बांट ले, बांटा गया काम अड़का हो जाएगा, एकला आदमी जब काम करेगा तो उसने भारी हो जाएगा। तो सारे घर के परिवार के लोग बाग आपस में काम को बांट के करें और साझे तय करें, सलाह तय करें, बंदी बुआरी तय करें। टाइम में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते हैं, अब समय के बदलाव के साथ एकल परिवार होते जा रहे हैं। देखो बड़े परिवार के फायदे भी थे और थोड़ी बहुत कमियां भी थी, बड़े परिवार में एक आधा ठल्ला रह जाया करता, लेकिन जब इकट्ठे बैठ के खाना खावे, एक दूसरे के सुख दुख को साझा करें तो सारी बातों का समाधान अच्छे तरीके से हो जाया करें। रिश्तेदारियां में भी आपस में सलूके और सलीके से साझली बात करें, सुख दुख न जाने। पहले फोन कोन्या थे, रिश्तेदारी में मिलन जाया करते, आज फोन हो गए, सांझ ने हर रिश्तेदारी के हालचाल को जान लिया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फोन पर लंबी बात ना बतलावे, लंबी बतलाई गई बात में एक आधी न्याऊ बात भी लेकर सके जिस तरह अगला आदमी काली मान जा और रिश्तेदारियां में दरार भी आ जाए। तो इसलिए रिश्तेदारियों में जाके फेंटें, घी मीठा खावे, आपस में बतलावे, अच्छा सेहत स्वास्थ्य बनावे और एक दूसरे की बात को समझें और समझावें ताकि हमारे पारिवारिक रिश्ते मजबूत रहें।

अंत की भी खबर नहीं, शमशाना तक बूटी तो है, असर इस पे जबर नहीं। तेरे तन में फरे धनी ने तू भूलिया, दिखता केरी बबर नहीं। अरबपति हो धन चावे, तेरे बेसबरे तेरे सबर नहीं।

तू पाथे याद नहीं शमशान तक कुण बारो है गैल हवे बर्बाद नहीं एरे तेरा दिन तेरी तरिया मारोवे रोवे इसते बात नहीं जिंदगी भरे तेरी माता रोवे।

个爹去，我个爹去，谁这个东西不真可怜，我那陪的给，阿里给的

फिर मैं लगात में कह भी के संतोष बराबर धन को न्या संतोष नहीं उनके शे भी के भजन करे ते मोक्ष मिले वे मोक्ष मिले फिर रे भी के भजन करे।

0: बात पारिवारिक रिश्तों की कर रहे हैं भाई, परिवार तो एक बंदी बुआरी होया करे, और परिवार में बैठ के कोई भी बात को जब साझा करेंगे तो उस बात का समाधान बहुत जल्दी हो सके है। गाम राम की बात करें, साफ सफाई पर जोर दिया जा, पीने का पानी हर घर में पहुंच जाए, किसी के ना पहुंचे उती काली हो जाए, तो अपनी जो भी टूंटी आपने ला रखी है उनके ऊपर स्टैंड पोस्ट जरूर होना चाहिए। पानी को बचाना आज समय की आवश्यकता है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल बचावेंगे तो अपना भविष्य बचा लेंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमारे कुएं जोड़ पोखर बावड़ी बहुत बचा कर रखी, छतरी वाले कुएं आजकल भी गामा में देखे जाए जो हमारी पुरानी संस्कृति ने दिखावे हैं। आज तो हर घर में हर रसोई में पानी पहुंच गया है, पानी का प्रबंध तो हम कर ले हैं, लेकिन जल निकासी का अच्छा प्रबंध जब नहीं हो पाता तो गामा में कूड़ा कचरा कादा बहुत सी बीमारियां फैल जाए, तो आसपास के इलाके की सफाई पे जरूर गौर फरमाएं, पानी की निकासी का अच्छा प्रबंध करें। सामूहिक तौर पे पूरी गाड़ में बगड़ में यानी पानी का अच्छा निकास हो जाएगा तो उस पानी का समाधान भी हो जाएगा। मान लीजिए घर में पानी लेकर दूसरा आग ला दे, पानी गाड़ में खड़ा रहेगा, हरी बीमारी फैलेगी, बीमार हो जाएंगे, नफा नुकसान उसमें हो सके है। तो स्वच्छ जल तो स्वस्थ कल हमारा रहेगा। पानी बचावें, पानी को बढ़ा नहीं सकते लेकिन पानी को बचा सके ही हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, संसाधन हैं, इनकी बचा के रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा स्वच्छ जल दे सकें।
1: ओए भूपत करिए दरबार,

तो ये तो था भाई आज का हमारे गांव कार्यक्रम में आपसी बात बतला। सलूके और सलीके थे घर में रहे, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बुरी आदतों से बचावें, उनके भविष्य के बारे में जरूर सोचें, बच्चे भी इस बात पे गौर फरमावें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, खूब खेलें, दादा दादी के संस्कार ग्रहण करें, बुजुर्गों की बात को मान्या जाए, उनके पास बैठें, क्योंकि बुजुर्ग हमने बहुत अच्छी बात बताऊंगे जो हमें जिंदगी में अच्छा लेना देगी। कार्यक्रम आपने किसक ला गया इस बारे में ठोस ठीक प्रतिक्रियाओं का इंतजार कराया करें हम। कार्यक्रम मारे गांव द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 125001 और वही हो गया घर चालों का टेम। इसी के साथ थे आज का मारे गांव कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दू ने दे अनुमति सारे वन भैया ने। राम राम।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: FIR at 90.
1: श्रोताओं, ये तो आपने सुनी जन उपयोगी संदेश, और इससे पहले आप सुन रही थी गांव की माटी से जुड़ा कार्यक्रम म्हारी गांव। आकाशवाणी का ये हिसार केंद्र है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात्रि के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम पंजाबी लोकगीत की ओर। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं गुरदास मान की खूबसूरत सी आवाज में पंजाबी बोलियां।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी गुरदास मान की खूबसूरत आवाज़ में ये बोलियाँ। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुलदीप मानक की आवाज़ में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये है आकाशवाणी का हिसार केंद्र एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पंजाबी गीत। आइए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है खुला आकाश। श्रोताओं, कार्यक्रम खुला आकाश में हमारा आज का आकर्षण है एक फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है असली नकली। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म से पहला गीत।

एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हिसार और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है असली नकली, तो आइए सुनते हैं इस फिल्म से अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक फिल्म से। हमारी आज की फिल्म थी असली नकली। इस वक्त रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ஆயின் நிகம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिला

0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
4: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्य की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
5: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित।

0: शायद स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूल जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
5: Almost 3 open or 7 इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
4: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post

0: बॉबी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यही समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: किसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था, जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। उस साल था 1984 जब रांची प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस।

फिल्म अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और

उत्तर दक्षिण 1987 में। 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुई, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्म

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में

माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा

0: मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेली पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नच ले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साइन तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आखिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। आकाशवाणी का यह हिसार केंद्र है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम संदेश आपकी गीत हमारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो साथी सुनिधि लोहान। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, ये एक व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप अपनी फरमाइश अपने नाम के साथ और अपने शहर के नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले संदेश से। जानते हैं कार्यक्रम में पहला डिजिटल खत यानी कि व्हाट्सएप मैसेज हमें किसने भेजा है। पहला मैसेज हमें मिला है नई बस्ती गंज डुंडवारा से। प्रेषक है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से संदेश करता है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, शैलेश लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षता लोखंडे और रेयांश लोखंडे। एक और संदेश हमें मिला है पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। संदेश करता है एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। प्रशाला मुलांची पैठण से चांद मामू, शेख फुरखान, शेख गुफरान, शेख जकिया, शेख खुशी और शेख आसमा मोरवी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने हमें संदेश भेजा है और साथ ही अपनी फरमाइश लिखी है। फिल्म लिखी है कटी पतंग और गीत सुना चाहते हैं ये शाम मस्तानी। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा।

दोस्तों, फिल्म कटी पतंग के इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा गया है हरिनगर गीता की नगरी कुरुक्षेत्र हरियाणा से। प्रेषक हैं सुरेंद्र अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल और सुशीला अग्रवाल। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक और प्रियांशी ने चौधरीवास से हमें संदेश भेजा है। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत को कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर और साधना पवन पाटिल। वटसिंगी बुलढाणा से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली को कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। पांडर कवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। बलहार शाह से सूरज, प्राची और एकलव्य को कार्यक्रम में शामिल करते हुए अगले व्हाट्सएप संदेश की ओर बढ़ते हैं। ये संदेश भेजा गया है गांव जेवरा हिसार हरियाणा से। संदेश करता है वीरेंद्र भयान, शमशेर भयान, सुरेंद्र भयान और मनोज भयान। गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। श्रोताओं के नाम हैं रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी कीरत अवाना। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, औशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। एक और मैसेज हमें मिला है अभी अभी जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। इन्होंने फरमाइश की है कि फिल्म खलनायक के गीत पालकी पे होके सवार चली हमें सुनवा दीजिए। और ये प्रेषक हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोडाना। इनके साथ ही सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। तो इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म खलनायक से।

संदेश हमें भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। ये लिखते हैं कि किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिएगा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा के साथ साथ सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माहे मलिक को हम कार्यक्रम में शामिल कर रही हैं। नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से पीएस नवहावकर, निर्मला और विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुहर्रेकर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया ने हमें संदेश भेजा है। एक और संदेश हमें मिला है, ये लिखते हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से संदेश करता है अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और मंटू शर्मा ने शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें संदेश भेजा है। गांव चूली देशवाली तहसील आदमपुर से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से रघुबीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और रामनिवास पांडू ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। इसके साथ साथ डाबकी रोड अकोला से हमें संदेश मिला है, ये लिखते हैं कि फिल्म आजाद का गीत अपलम चपलम हमें सुनवा दीजिए। संदेश करता है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। तो इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर वर्ष 1955 में आई फिल्म आजाद से पेश है ये खूबसूरत सा नगमा।

श्रोताओं, फिल्म खलनायक के इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले संदेश की ओर। कार्यक्रम में अगला

एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हिसार और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश आपकी गीत हमारी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण ने। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले डिजिटल खत यानी कि व्हाट्सएप मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से। इसे भेजा है विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रामा पुरी, पाली पुरी, सुनील पाठक और वीपी पुरी ने। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता, खुशबू, खुशदीप और परिवार के सभी सदस्यगण हमें संदेश भेज रहे हैं। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा को हम कार्यक्रम में शामिल कर रही हैं। एक और मैसेज मिला है गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से। ये मैसेज हमें किया है गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांडी ने। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत को कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। एक और मैसेज हमें मिला है आदर्श नगर मलोट पंजाब से। ये लिखते हैं कि कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए। प्रेषक है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, गौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। अगला संदेश हमें मिला है पींगा वाला चौक गौरैया जालंधर से। संदेश करता है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। गंज टुंडवारा से एक व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है और इसमें लिखते हैं कि फिल्म इज्जत का गीत ये दिल तुम बिन सुनवा दीजिए। प्रेषक

शमशूल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। तो इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अगले संदेश की ओर मैं बढ़ रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी श्रोताओं के लगातार इतने खूबसूरत से मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर लगातार आपके संदेश फ्लैश हो रहे हैं। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर सकूँ। तो कार्यक्रम में अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्यगण। छोटी बलिया मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल और इमरान अहमद फूलवाले ने हमें संदेश भेजा है। कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमापुरी, राबिया और आशु अहमद फूलवाले का संदेश मैं कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के पप्पी खुराना ने हमें कार्यक्रम में संदेश भेजा है और उसके साथ साथ एक लंबी लिस्ट हमारे सामने आपके खूबसूरत से व्हाट्सएप मैसेज के आ रही है। एक और मैसेज हमें मिला है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से। संदेश करता है सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बाघमारे और शशांक बाघमारे। एक और संदेश हमें भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहानी, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। ये लिखते हैं कि आप हमारे नाम किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिएगा। मोदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर साह को मैं कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। गांव हीपर सोगस तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख को कार्यक्रम में शामिल करते हुए एक और व्हाट्सएप मैसेज की ओर मैं बढ़ रही हूँ जो भेजा गया है गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से। प्रेषक है जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर। लिखते हैं कि कोई भी एक गीत हमें सुनवा दीजिएगा। एक और संदेश गांव जाखोद राजस्थान से मिला है। फरमाइश की है फिल्म आए दिन बहार के गीत के, जिसके बोल है ए काश किसी दीवाने से। तो संदेश कहता है शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। तो इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से। संदेश करता है सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। गांव कुम्हारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन ने हमें मैसेज भेजा है। इनके साथ ही वर्ली मुंबई से नवाब खान, इसरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से मास्टर अलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदिम पटेल ने मैसेज लिखा है। ये लिखते हैं कि हमें कोई भी नगमा सुनवा दीजिए। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली का संदेश हमें मिला है। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी और डॉक्टर अफसल मलिक ने हमें संदेश भेजा है। लिखते हैं किसी भी गीत को सुनवा दीजिए हमें। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और सुनीता साहनी को मैं कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी को मैं कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हमें एक मैसेज मिला है। ये मैसेज भेजा है सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना ताई गोंडानी, हीरामन शेंडे जी और प्रणय प्रसिद्धि के साथ साथ प्रतिभा गोंडानी ने। एक और मैसेज हमें मिला है सांगली जिले के जत शहर से। फरमाइश की गई है फिल्म किस्मत के गीत कजरा मोहब्बत वाला की। तो प्रेषक है अल्ताफ हुजरी, सैफुल्ला, सबाहत, किरत और रेहान शेख। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में। कुछ और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर रही हूं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। ये लिखते हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए। अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। फाजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार ने हमें मैसेज भेजा है। श्रोताओं के नाम हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक

समस्त खेड़ा परिवार हमें किसी भी गीत में शामिल कीजिए, ये लिखते हैं। इसके साथ ही बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय ने हमें व्हाट्सएप मैसेज लिखा है। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, ये एक नाम शायद इन्होंने दोबारा लिख दिया है, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा खुशदिल परिवार, ये लिखते हैं कि आप हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान को कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगणकर, निशांत कुमार और अर्पिता ने हमें संदेश भेजा है। गांव पनिहार चक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा कान्हा लड्डू, ममता और समस्त दहिया परिवार की ओर से हमें ये संदेश मिला है। तो इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर और जिन श्रोताओं को कार्यक्रम में हम नहीं शामिल कर पाए हैं, उन सभी श्रोताओं के लिए भी आज के इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा फिल्म आहट से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश आपकी गीत हमारी। रात्रि के 11 बजने को है, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के हिसार केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और